0: ना इधर उधर देखें, एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
1: एक मिनट
0: गो।
2: लापता हूँ ये बता तू,
1: तुम हार गई।
0: अच्छा
3: मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने get out right now।
0: ना कुछ, सिर्फ एक दिन के लिए।
1: कभी कभी एक दिन भी काफी होता है।